0: சிவன் பீக் டிக்ஷனரி
1: சன்ஸ்க்கு.

0: Sabine. Abonnentelsme. Je. Dritte Sankalapka. Abonnese.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते, संबंध संपर्क में ला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत समय बढ़ता जाएगा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्रालंबित बना रहे आवश्यकता। अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाते लौकिक काम करके तक के आते है। क्या करें, नहीं खुशी खुशी में दोनों निभाओ। क्यों देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादी या जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, हाथ ड्रम लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते। हाँ उठाओ हाथ। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। पांडव पीछे बैठे, अच्छा है। आप निश्चिंत रहो, नंबर आप लोगों को वेस्ट ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होंगे करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा बना हार करा रहे, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ पावर के आधार पर चल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया। समय को देख भी रहे हो मनुष्यों के मन में चिंता भर रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि आप निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करा बना पाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करा बना करा रहा है। ये
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ सेकंड में बिंदी लगाना। बच्चों का तो बेफिक्र बच्चा का रूप देख रहा है, अभी इसी रूप को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप भी फ्रिश्ता ड्रेस जैसे बिना बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फ्रिश्ता ड्रेस बदली करके टेस्ट लो ये भी, बस बाप दादा इमर्ज करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फ्रिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया साधारण से फ्रिश्ते रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान के कभी शक्तियों के कभी गुणों के रंग डाल रहे फ्रिश्ता ड्रेस पे। फ्रिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फ्रिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रिश्ता ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फ्रिश्ता बनने में। तो होली की ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रेल करते जाना, बोलना नहीं, फ्रिश्ता ड्रेस सौगात में दे रहे हैं होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना, सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फ्रिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर कितनी चमकती हुई सुना। ये ट्रेल बोलना नहीं, वस्त्र बदली करना दिन में जितना वार फ्रिश्ता ड्रेस में बैठ सको चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर, अभी से संस्कार डालो फ्रिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बहुत आप लोगों का काम पड़ना है, ये नहीं सेवा कर ली, भाषण कर लिया, फर्क को चला लिया, नहीं बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है, जैसे शुरू शुरू में शिव ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया फलाने स्थान पर जाओ, किस पर प्रेरणा आई सुन करके मुझे जाना ही है, बाकी आई ना। और जो शुरू में आई वो कितने बाकी है, याद करते हो ना दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना, तो जो शुरू में हुआ वो अभी अंत में भी रिपीट होना है, इसलिए अपने मनसा शक्ति को मनसा सेवा को बनाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालत ही गंभीर होगी। मनसा सकाश देने का सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ इसकी ट्रायल करो, बहुत आवश्यकता होगी। आकर तो करता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं, तो क्या चेतन में नहीं बनेंगे, अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं है, दिन रात ये अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है, ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए भी तो उठते हो ना, तो ये अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी, नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होंगे, बड़े बड़े मंदिर नहीं बनने के चाले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे है किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जारी निश्चय में पास होना है।

0: जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, कंबाइंड हो ना कि अकेले हो, कंबाइंड
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ा। से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। दीवर पुरुषार्थी बचो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प, सारे दिन में बीच बीच में चलता है वेस्ट।
2: Wow.

Yes, sir.

0: 神满足你，莫切达达文南，谢不谢地巴诺塞纳，达达给不切达达，我的。Espero que tata tata kabile tata yota apane freti or tristi me.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन मेरे रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है। समझा? अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

otra raza,

0: Attention, Sam. Reckoning.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने

0: Essa
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Last number maybe।

recipe.

Somos

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा। अच्छा ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहूं, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा, जो चाहते हैं उनको दे रहा है, आपको दे रहा है ना, मदद दे रहा है ना, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
2: फिर तो बहुत जगह भी जाना पड़ेगा
1: जी,
2: बहुतों का निमंत्रण होता है किसी को, सब कहेंगे यहाँ आया यहाँ नहीं आया।
1: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं कर, चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती, ये भी दवाई है। कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो ये पहले बताए, तो रिजल्ट रहना और संतुष्ट

जाएगा।

Fioretti. Some.

मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

परिवर्तन का कार्य। So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी

ऐसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्म जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल मोट बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठेका क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना तो क्या कंट्रेस्ट लिया है क्या? प्रकृति के मोट पीछे जिकर

0: चीज करता है ना तो प्रकट परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? हाँ होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठ, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है तो पाप कहाँ गया, अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए। ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, ठीक है। मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा दिखता है, परों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो। क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाता ही है, यही बाप दादा का प्यार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अब संस्कार कमजोरों के ना

करता
सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों की फटाफट कर रही है। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना। बोलो पांडव निकाल सकते हैं तो निकालो। बाप दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिजी शिकल भी बिजी कर देते हैं। बाप दादा मानते नहीं है, जो चाहे वो कर सक। अटेंशन कम है, जैसे वो अटेंशन रखते हो ना 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है, इसीलिए बिजी होते हो ना टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो बनाते हो ना टाइम टेबल। इसमें 1-2 मिनट पहले से ऐड कर दो, 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं 8 मिनट लगना है। तो 2 मिनट साधना में लगो, ये हो सकता है, हो सकता है। इससे पूछते हैं गायत्री से, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी। बाप दादा चेहरा भी देखते हैं उस समय, फोटो निकालने वाला होता है। कितना भी बिजी हो लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्वोन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है, उठी भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है। और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाए, खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट

0: एक्शन का जिस की मार्ग में अंदर तो होगा ना कि नहीं होगा, होता है, फर्क होता है। हाँ, तो अभी बैलेंस लिंक को नहीं तोड़ो, नहीं जोड़ते रहो। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस जितना समय निकाल सको सीकर निकालो, मिनट निकालो, निकालो जरूर। हो सकता है पांडा, हो सकता है टीचर्स, हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो, हो सकते हैं, हो सकता है। हाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले साथ साथ पाप के आशाओं को

사탕 초콜라에 소 아즈카로 갈발레이저로 얼티디게 예볼 앞가르첼라에 दोनों लगा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। Master knowledgeful, Master sarvashakti swarup, to anubhavi swarup banne mein kuch kami dikhai thi। शरद करते हैं बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी, जो पुरुषारत करके आते मैं जा रही हिस्सा।

Szép dada. Brahma Baba Kodika. Powerful. Fristis.

0: Климаче. Light my room, maybe. Bed there. Nanny, hobby. Lincoln. It's a Maggie.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

0: selon combien c'est descendu. Dès qu'il y a un arbre qui passe, Sotokra, Shantika,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: था कौन नहीं जैसा मैं थकावट फील होना, तो कहां भी जाके डांस शुरू कर दो।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनने नहीं चाहते। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बनाया, रूप में कौन मूरत देखने चाहते। तो कर्म से विशेष सहयोग, गुरों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता। शक्तियों द्वारा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बीमारी को मरा देती क्यों?

0: नहीं लगना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और क्या होता है ये पार्ट पक्का हो जाता है ना, मैं बीमार हूँ तो कभी कभी होते नहीं है। मानो कमर में दर्द है, मेजॉरिटी को होते एक टांग दर्द, एक कमर का दर्द। तो कभी कभी नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है ना, तो बहाना करेंगे मेरे को कमर दर्द।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है? मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ, उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन भ्रमण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते, माया भी सुन रही है। अपना तो आसमैश करेंगे।

आप याद करो, मेरा काम भगाना है, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? पूरा स्थिति

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों की रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवादारी। बाप दादा के पास ऐसी सेवादारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है, बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, तालियां बजती रहती है, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी आला पहले पन और आलस और बहाने बाजी खेल देख लिया। चलो सत्तर नहीं तो पचास, चालीस, तीस, बीस, लेकिन इतना समय तो ये तीन खेल खूब देख के बचोगे। Yes.

हमें जागरण देखने चाहिए। कभी भी देखो क्रोध आता है, अपमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताती है? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देती है, कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते, ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। लेकिन शब्द यही कहते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये होता ही, ये क्या है, अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया, तब हुआ, मैंने किया, रंग वो नहीं कहेंगे, ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज, ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वो नहीं होगा, वो करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोप रोप भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो क्या आज चार का भी व्रत लेंगे जैसे पहले? विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही चार का संकल्प ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ, और पाप जो बार बार कहते हैं वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, ये पाप।

0: जो चार को हल्का कर देते हैं, तो क्या हिम्मत है जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे, वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं, तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे, हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प की कमी हो जाती हो जाएगा, चलता है चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट की है बातें, अपने हिम्मत नहीं चलती ना, तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो, उस समय वो महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए, कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डॉक्टर कल्याणी नहीं, सोन कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना। तो बाप दादा सोना क्या कर

विश्व कल्याणी का स्वरूप।

0: चक्कर लगा के चारों देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Hacha a ti.

さっとした気質で、キスビブルカーキー。

चार संतुष्ट है।

this up, me. Why you want that law? Guess I.

Rework.

Unheimlich.

परिवर्तन कर सकते।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। और बाप को भी हर बच्चा प्यारा है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यार है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यार है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत बना रहे। योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा। और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय पत्थर के रूप में उसी शक्ति और सफलता के याद रहता है। बार बार के साथ से गर्म किया, इसलिए डबल लाइट रहता है। और अगर कोई विक्रम तो अभी नहीं होना है, वो तो टाइम अभी बीत गया। अगर अभी भी विक्रम भी होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है, लेकिन अभी भी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म व्यर्थ बोल व्यर्थ संबंध संपर्क योग व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता। कई बच्चे बड़े चतुर है, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? फेंकेगा क्या? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। पर

0: Solatet ist leer. Abi, Sorge blättert sehr der Kasane Kartenkaro. Jamaba Lekaro. Lekan Kartenkaro. Sevaba Lekaro. Fiat Kartenkaro. बहुत जमा करना है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Merci.

sun.

sort of

0: समय सने के अनुभव को याद करो। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएंगे। अनुभव करके देखो,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से देवता बीच में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन सुध ही जुट जाएगा। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो सफलता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

the

Peace.

Dormía.

Astro.

Sick.

Seram. Sari gelap.

死。

Dios saberes, saberes, tu ordenes.

Escuche abdômen.

Easy.

みたいな。

Sí, pero...

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ऐसे पावरफुल होना चाहिए जो जो भी साधारण आते हैं ऐसे।

Jesse Simpson.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

एक तरफ अगन अगन को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की शीतल भी करेंगे, भेद के फैरा

Bye.

0: साकार नहीं होना थे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, अभी समय के समीपतानुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक। Some

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने तो बहुत समय से

बीबी बच्चे तो से

0: की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले निमित बने हुए बने फर्क

0: папа, типа. Ебаба, батюка. Милен.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डबल फॉरेनर्स निमित्त बने सारे विश्व में बाप का नाम बाला करने लिए इस दिल्ली के प्रोग्राम से भारत में अच्छी फैली। इसलिए बाप दादा सेवा के निमित्त आप सभी को इमर्ज करते भारत को जगा रही है और आगे भी ऐसे VIP तैयार करेंगे जो भारत को जगाएंगे, उनका अनुभव भारत वालों को जगाएंगे।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah, that's something.

discoteca. Yeah.

अब

0: अब समान बनना कोई
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है। बाप इतना भी फोर्स दे के कहते हैं, अगर कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं। अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रत समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से। सबको देख लिए महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्क्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे महारथी

तो खाखा लेकिन इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, तो खाका लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय है, अटूट अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंत

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

में आ रही है।

Coffee.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पांडवों का गायन किया पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे, साथ भी रहे साथी भी रहे। इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है, विजयी पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्म साथ और साथी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी उठ।

Benjamin.

0: vocês. Tati, o quê? Pode ler. Tati, querida. Tu tá de legal. Que mochê.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं ना, जो तनसे मनसे सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वारस क्वालिटी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है।

सपने जीने का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारे लोग आपको बदलने चाहे बदल सकते हो तो जो भी सब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत
2: कुछ

संयोग हिम्मत फैलाएं।

0: Ricky Bramar, giovane Coproma Kumar, Kumari Samaste, Onko Ese, Seva me busy rehna.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने करता है तो बोलता।

0: सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो, सब सफल करो। डबल लाइट बनना है ना तो सफल कर लो, संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार, आत्मा के, उसको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय विदेशी, जय भारतवंश, है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समय हुई, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

Joking.

आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितने दुआएं देंगे, और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। सफल करो खजानों को, सुनाया ना मन सास से शक्तियों का खजाना, देते जाओ वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, समान संपर्क से खुशी का कसन। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ, चाहे सुखी वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Okay, you're not.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक

0: एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवा, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

啊。

оправданных рассудков.

अभिसमय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय के
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृत्त ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई शिवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो तेज आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता, कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे हो सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सच्चे बाप से वेरी

0: कोयला नहीं सुनता क्योंकि बाप बाप के साथ। कह रही है झूठ है तो झूठ को झूठी कर दो ना, पढ़ाते क्यों। तो आज बाप को बहाने बाजी अच्छी
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़।

Nico.

rischiatarsi. Acci. Sure.

चौ का लक्ष्य और लक्षण देख खुश है।

आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़

0: दूसरी बातों को नहीं देख। आगे पढ़ना ही है। बोलो, सबको ये लक्ष्य है, आगे बढ़ रही है, वो हाथ उठाओ। एक दो की कमजोरी की बात, सुनते भी जैसे नहीं सुनो, खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं, आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Chira।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चैलेंज

下。

0: चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: यज्ञ में हरेक पाठ अपना अपना आवश्यक, कोई भी एक निमित्त सेवादारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हरे का पाठ अपना अपना महत्व होगा, कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये पाप का वरदान एक एक कामन पाठधारी को भी, जैसे भंडारी वाले है तो कामन पाठ, लेकिन भंडारी वाला नहीं हो तो काम नहीं चले, सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं।

को समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूं। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश

I don't know.

सने को अपना बनाने से।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Oh, shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Imagine.

ese broma, mami. Rose.

siete. Leckenismen. Dein Budget.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

किसी भी परिस्थिति में स्थिति पर स्थित

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करण हार बन बाप सम्मान न्यारे और प्यारे, बाप सम्मान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को सम्मान बनाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चों को

missing.

ब्रह्मा मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कमा। दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी। और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास

0: to stop. Seeker me. Lagane ka. Bar bar. Abhyas karo. Abhi. Fast divar purusharat karo. Abhi dhila dhala purusharat. सफलता नहीं दिला सके।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाए, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? रहता है। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंदा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस अभ्यास को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
3: 2000 टीचर्स आई है। 21,000 भाई बहने आई है, 2000 टीचर्स आई।
2: खुश होते हैं क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप के Yes.

morning, teacher. Genesis. Say it.

0: parte quieta. Cardiana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Or not. आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Oh.

¿Y por qué?

Listen.

tiene un olor. Mira tu abajo.

Bye.

Holz.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बच्चों को बाप दादा नहीं ब्राह्मण परिवार में आने की बहुत बहुत अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार।

0: Lord Pariwarko. Dicto Lia. Vaptata Samaste. Ke Abchai.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई समझते हैं बदलना नहीं है। चलो आपके जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर वार तो है ही ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना, आप सब जज बन गए हो एक दो के। बाप भी तो देख रहा है।

कर वे और बाकी मीठे का।

सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। जिस बात में

0: ฝันปนันในวันแล้วตัวยีตัวอัดตัวไม่อาการฟรีดีเวเบรชันหรือไฟโอมันนั้นที่นกสัมมันเดฟรีดีเซVibration होती है, vibration से वायु मंडल बनता, लेकिन मूल है वृद्धि, अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी पाप की प्रत्यक्षता
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगम योग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने चाहते दूसरों का दुख देख करके भी, आपके भाई है आपके बहने दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप करने वाले होंगे, लेकिन साधारण समझा क्या करना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सही

muchas sutiles.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, बस नहीं करना है, नहीं बोलना है। It's

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है, तो अचानक होना है। और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाइट 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता। जिसको हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो। क्योंकि अभी भी बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सको। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाए। कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय दस मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अड़चन नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना भरा सको उतना भरा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि सेवा वा करम और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग योग दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करा वन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं आत्मा, करण हार वन हार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनेगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या कभी कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? कारण हार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूं। कारण हार के बजाय अपने को खराब हार जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा

अभी पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज खोल लेती और आ जाती। अगर करण रूप से करा वन

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान

ちらと。

없으네. 있어 없을 거야. 없을

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए। इस दिन बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे। विशेषता दिन में विशेषता धारण जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे पाप समान बन जाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सब का चेक किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों को

姐姐，我姐妹，阿拉被你们没抱得的，一头大爷，一头真大爷，真里头什么真的，把这大光下的。Just stop.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पवित्रता का वाइब्रेशन

suck.

için. Buruç or buce. Okay.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को भी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, प्रजा तो बनती जाएगी साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

Gelati.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम युग के

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं साधारण कर्म शुरू हुआ। समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ न करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत

0: जैसे हाथ के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी के सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिक बन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है खुशी के अनुभूति होगी। और रिजल्ट
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब ज्वालामुखी योग वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे, एक दो के टेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तभी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कि कुछ हो नहीं रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है उन्हों का बनेगा। आप निश्चिंत, देना आपका काम है, लेकिन सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और ही व्यर्थ संकल्प चले, जाना भी रीत पर ब्रह्मानु मधुबन वासी ब्रह्मानु ऊंचो अपने मर्तबे को जान, ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सुन, आपके कर्तव्य को सुन
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिरा ना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो, आत्मा का तो आत्मा को निजी संस्कार आत्मा के जो है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है। शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताती है, पहले भी पता है तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते। अभी इन तीन पर को काट दो, एक पर रखो, वो एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, परोपकारी है ब्राह्मण का स्वभाव है। परोपकारी प्रदर्शन नहीं, ये पर काट दो। ये तीनों बहुत नुकसान देते, इसीलिए अपना स्वमान सदा ये याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है, पर उपकारी। तो दूसरे सीजन में बाप दादा हो सकता है, हो सकता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक। तो क्या करना? अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे। वर्क मिला।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों ये कमाल देखने चाहते, विचार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में ये ही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
1: पापा याद कर देंगे। हाँ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा, आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवे बन की, कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक, आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा। क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय लाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, टालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप की मदद तो है लेकिन समय पड़ने में।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पहले बार आई हो तो कमाल करो, क्या कमाल करो, पहले नंबर का पुरस्कार ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है, दीवार पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, दीवार पुरुषार्थ करो, करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, ये दृढ़

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

और सीखे अधिकारी तो बन गए।